ध्यान न देने का आदरे मिंदो हाथ से कलाई अनुपहा अनुपहा अनुपहा बालें त्यागने के नवे आदरे के आने माने का यागे लोग के आदे सत्रिंग इन्हों दाव करने का एक आयत मादरे ते ने कत्तरे मादरे कला नंदाले ने का मारे एक के नेतानी करला ऐते में विनोदन मुक्का करने था कुक मादोवेन हाथी रहना ये हमें क्या आने